0: การพันชาวันยดอนตีอะฟิลฟิกเจนนะจงจ้างอะตุ่มทุ่มหุ่นเนนอินปุ่มขัดินอันทาวตัวทูอสวยบกอันนี้
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: Nordic ram chua du de poe mi pui ro rena tun din le da no rena choi san ko nga indi le Nordic le chon the to pan chua zel don ti an soi ve bok ani Union Education Minister Dharmendra Pradhan chuan Dharmendra Pradhan hovin nit UG exam ne thatura dik tak le lang tak takam bo sai ni the nan in bo sin clear homani a Nimin Khan New Delhi pur Pradhan ho hian high level meeting hi ne ni a Minister chuan exam bo sai na pop om thei zong zong no khat vek turin thune tu te cha a exam tha chu him takle ti ching pen thei lawa bo sei turin cha bok ani chan chin thar chati top na tlang pui chief minister pel do man rubber mission mangin ram hector singh ka sang kha zanga za wa rubber kung no sama bakha chong phun thar tu mani thu soi mizoram sarkar le hpcdlf te interim na thlung ni na ken tel sang sang ti hotin dan tur le bo zui dan tur nimin khan home minister buke sap tanga ka shu soi hovani India le Nordic Ram Insom Khom Chuan an thaw dun na chu Green Technology and Innovation Strategic Partnership an hlang kai Union Education Minister Dharmendra Pradhan hovin NEET UG exam ne that tur a dik tak le lang tlang taka bo chain ni the nan in bo se na thir hawani chu ti zong chu chan chin thar kan pon the chu ani

हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी प्यारे दोस्तों को, आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM जोय 100.7। और दोस्तों, आपके साथ हिंदी के खंड पे फिर एक बार जुड़ी है आप सभी की दोस्त RJ वियली। एंड आप सभी कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का समय अच्छे से बीता होगा। और नहीं, मतलब आज सुबह का समय और कल रात की नींद भी आप सभी की अच्छी गई होगी। यस, और हम दुआ करते हैं कि दोस्तों कि आज दोबारा हमारे साथ FM से 100.7 के साथ आप सभी का समय अच्छे अच्छे से बीतेगा। और मुझे आपके आप सभी के प्यार भरे संदेशों का इंतजार रहेगा दोस्तों। यस, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने कामों में जाने के लिए आप रेडी हो चुके होंगे। आपकी सेहत अच्छी होगी। यस, और आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? और जब भी आपको मौका मिलेगा दोस्तों, हमें संदेश भेजिएगा, ठीक है? यस, हम आपका इंतजार FM से 100.7 पर करते हैं। तो आप अभी शायद जा रहे होंगे कहीं, गाड़ी पर होंगे या सफ़र के लिए जा रहे होंगे या अपने काम के लिए जा रहे होंगे। तो आप सभी अच्छे से गाड़ी चलाइएगा, सावधानी से, ठीक है? तो चलिए हम भी शुरुआत करते हैं अपने आज के इस हिंदी के सबसे पहले खंड को और सुनते हैं आओ ना साधना सरगम और उदित नारायण के आवाज में गाए गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को हमारे आज के हिंदी के सबसे पहले खंड का सबसे पहला गीत यस आओ ना, बहुत ही खूबसूरत गीत साधना सरगम और उदित नारायण की आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों यस, आप सभी अपने कामों के लिए निकल चुके होंगे, जा रहे होंगे और शायद घर पर बैठे बैठे आप कुछ ना कुछ कर रहे होंगे यस, और साथ साथ हमें सुन भी रहे होंगे। हम चाहते हैं कि आपका दिन यूं ही अच्छे से बीता रहे। और चलिए, इश्क बिना यस, इस गीत को मैं सुनाना चाहूंगी। दोस्तों, इश्क बिना ये जिंदगी कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो इश्क मतलब सच्चा होना चाहिए। अगर झूठा होगा तो इश्क बहुत बुरी बुरी चीज होती है। इश्क सबको रुला देता है, सबके दिल को दुखी देता है, लेकिन ऐसा इश्क जो सच्चा हो, जो प्यारा हो, सबको मतलब सभी से इश्क करता हो, ऐसा वाला इश्क मुझे बहुत ही पसंद है दोस्तों। यस, और यहाँ पर मैंगमोते या माम होनीते जामते फिटनेस बॉय मैसेज रोनलेगा, लेकिन मैं इनका संदेश इस अगले गीत के सुनाने के बाद पढ़ना चाहूँगी, ठीक है। यस, तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिलहाल ये गीत सुनते हैं मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को सोनू निगम और यस अलका याग्निक के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत इश्क बिना। यस इश्क बिना आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। और जैसे कि मैंने कहा था कि इश्क बिना इस जिंदगी में कुछ भी नहीं है। अगर जिसे इश्क नहीं होता वो इंसान नहीं है, है ना दोस्तों? यस मंगाई ना दिल लो चुआन शिंग नुनी अरुआ अनि तेरो अमारो चु एंगे मंगाई हे इधर का सोयांग मंगाई खावन ने क्या रंगाई लो हे मंगाई ना कटी अम्म जान चु मो हे लव मो लाइक नूले पाते कन मंगाई ना अंगची ते उले नाउ इन मंगाई ना अंगची ते चियान इन मंगाई ना अंगची ते कटियां ला पंखा हे गई जोंग लम पंखा कब सोई लो नी चु चुमाई चान मंगाई ना के मानी मंगाई ना खा आ ओम लो खचान क्या बोलते मशीन मतलब इंसान नहीं हम, है ना दोस्तों? यस तो इस तरह हम एक दूसरे के साथ प्यार इश्क बरसाते रहेंगे दोस्तों। यस और अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ। और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी, बहुत ही खूबसूरत गीत, हमें जब से मोहब्बत हो गई है। यस इंग टिक ट्रंग खान ये गलो दो ताक मो गलो दो ताक से इंग टिक ट्रंग खान ये गलो वंगई से मो खत्या लो पंग खानी तानी। और इस गीत के सुनाने से पहले मैं चलना चाहूंगी आपके भेजे के संदेश की तरफ। यहाँ पर मिंग मोई ते ह्यान वनल नमस्ते दूती नुआम ले अरुण तिया नंग पो ले ओ नुआम दो इन वही ना हुनी लो मंग दोन्या ओ मिंग मोई ते चुआन मामुनी हियान आर जे वी एल वो इन चू ला आइसक्रीम नेन आ इन मिक्स कमोमो अनिया ओ निमिन आइन अलो लुंग जुई केचु केशे ओम गोय गोय कलुही न तो लो शाम से इबुल चन्ना अफु हाल रोन दियानी ए काई लुना खालो दम सोंग सोंग दोरिन आइसक्रीम ला मो

တို့ခကငိုင်းလာတော့ငါရအောင်ဆွမ်းစမဟဲ့ငယ်ဒီလစ်ဘေအဖစ်နက်စပေါ်ရစတိုင်လာလေဗယ်နီမောဆွမ်းဖစ်နက်စပေါ်ဟျန်ငိုရကန်ကေကာရီလော့ဇာမမေဒိုစကစန်ဒေးရှ်မေပနာချောင်းကြီးहेलो आरजेवी एंड नमस्ते सुप्रभात यस आपको भी सुप्रभात जाम यस आप कैसे हैं मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपने काम के लिए तो निकल भी चुके होंगे और आपने तो स्टार्ट भी कर लिया होगा है ना यस और वो इंटरेस्ट ना चटक ने आठ वक्त का ड्यूटी थे ना दो सब नई तान खिलाने नेक्स्ट ड्यूटी नेक्स्ट song duty pinen in tan le control room a duty zong zong le duty officer tan po o tin utp angur dwa ta pa mai lovin duty nuam le utp hi chui mai phal lo ni tro zam engei mai phai engei i mai phal lo na chan utp hi enga tinge i du mm na chan min lo shilte ani chu biak engei kha biak lor le hey du engei du lor ti mi kha kung te ai so yang khan ka dang deu khan ni ve thau si ya la hi ron than sak ve za chin chi si ya ama la hi ron lang ngai te si la wa ron than sak ngai bok chin o ron than sak ngai bok si lau che ya i feel ve khop mai tro zam ka chan pa hi chu i feel ani o chuan chuan a kung te hi na chi mo ve vein chu i u hi a re avare ve kau itine chu utp amo I just side of it they are on chu a nang chu angai sak to lo che aniang tro ya pe lo ke a ya ngai sak to hi anga le lu to ka boi tha ga di hi ma se pe lo e alim na kha alim na kha kan tim na ni mai ho zwan fitness boy yan kasen shipar vulmoy bear eh issue masi ke naam mein aap sabhi ko jai masi yes aapko bhi jai masi fitness boy aur aaj ka din hum khushi se bita aaj ka din tum khushi se bita sako iske liye meri aur se tumhe sabse unchi shukamnaye eh wow so sweet to main bhi aapke liye दुआ करती हूँ शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि आप का दिन आज अच्छे से बीते यस तो चलिए अल्टरसाइल होते मोरिसलर क्या देते और आप सभी का संदेश पहुंच गया है लेकिन मैं इस अगले गीत के सुनाने के बाद पढ़ना चाहूंगी ठीक है यस एल से देते मोरिस एलर क्या देते का खोया मा लोकल बहुसू ओम तो चलिए ये अगला गीत इस खंड का हमें जब से मोहब्बत हो गई है अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज में गाया गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम और हमें जब से मोहब्बत हो गई है ये मैं मतलब मैं पूछना नहीं चाहूंगी लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब मुझे किसी से मतलब अटैचमेंट हो जाता है तो मतलब कब हो जाता है ये मुझे नहीं पता चलता यस प्यार ही ऐसा चीज है ना दोस्तों कि हमें बहुत ही सुकून देता है बहुत ही अच्छा लगता है और उनसे बातें करने मतलब उनसे बातें करने में भी इतना अच्छा लगता है कि क्या बताएं आपको जिस तरह आप हमसे बातें करते हैं मैं आपसे बातें करती हूँ बहुत अच्छा लगता है ना दोस्तों तो चलिए सुनते हैं ये गीत बहुत ही खूबसूरत गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम

दोस्तों, माफ कीजिएगा, गलती से मैंने ये कुछ दबा लिया था। तो मैं गीत के सुनाने से पहले आपके संदेश की तरफ चलना चाहूंगी। ओ कोंगते वांग वे कलो मेट पला चुआन और एल्ट साइलो हियान, इश्क हुआ कैसे हुआ अधिक तो एम ललवानी मिन खत्सु का कमान मोलू तू का। ओ गुड मॉर्निंग ले रोंदिया ओ दिखे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेश के लिए एलजेट साइनो। और मोरिस एल आर ख्यांग टेक की तरफ से गुड मॉर्निंग आर जे मिस चुआ निमी ना आर जे वे ली अनी आ इंदु बेर आर जे वे ली आ इंदु बेर का मैसेज का मैसेज अनचियार दू लोंगे या अनी मी आ कचियारिंग ओ निंस इलाउ थोन पोन कशे लवे आ अंतिवेला चुआन कुंगते हियान वो इन हिंदी आर जे एंजेला लल लोम की मी चुआन पुईतान नी नी पुई मो तक अनी पुआली नेक्स्ट खा करोन खांगे अरोन ते अनी कुंगते ला हिया हुई हम मी बर्थडे लाई शे थे बॉक्सिया तिरोजाम लेर कोलु तुक मई जान ओचीपी या गुडा तो पा कन ऑफिस आर पाने ने मैसेज कर दूंगा मसे कन के खरी लोग त्यांग एंगे नी ओ लो सही। फिलहाल इस वक्त मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी और यस बहुत ही खूबसूरत गीत अनुराधा बोलवार और उदित नारायण की आवाज में गाए गीत मेरी तरफ से दो दिलों की कहानी आप सभी के नाम।

Well, दोस्तों उम्मीद है आप सभी को मेरे साथ FM Zone 100.7 पर हिंदी के खंड पे RJ Vili के साथ हिंदी के गीतों को सुनकर आप सभी को अच्छा लग रहा होगा और आप सभी को हिंदी के गीत यस मेरे पेश किए गए हिंदी के गीत आप सभी को जरूर पसंद आ रहे होंगे दोस्तों और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के प्यार भरे संदेश

देशों को पढ़ के, और यहाँ पर चलिए गुरुद्वा तपा चुमलु तुकमई क्यूटलु तुकमई गुरुद्वाता ओ अपा इन उठी पी एन मेसेज रोथोना अनि ह्यान अजे वियलिन फंगे ना हन शिल फिया जे चु अ ओम ज्या चियांग एम एम सा हो पो कन बुआई नुआई वेक मिंती कन्फ्यूज तोक ले गिन ओम ज्या शिल फिया लोम ले कन मैथ जिर्तिर तु आते चंगता से कन थियाम सापो कन थियाम लवले जो वेक गे यंग एमएमएसए ओजीपी अधिक लो मी खत्यांग मांगे ना खा इनगाय जोंगा खेर अनि लेने मांगे ना ओम तोर मो तुना का मांगे अंग चिखान मो तुना नंग पोई ना मिन मांगे अंग खान हंति वेलीला मो खत्यांग खत्यांग ते पोखा मांगे ना ओम बेथे थावा और यहाँ पर ओ कुंते हैं रोन टाइप में का तो फिलहाल यस और बहुत बहुत शुक्रिया उचिपिया अपने कीमती वक्त निकाल के हमें संदेश भेजने के लिए और हमें सुनने के लिए यस और शायद उचिपिया भी कहीं जा रहे हैं किसी काम पे हो या किसी सफर के हो सफर के लिए हो यस अजीन दोनगे खोगे अकल दोनगे ऑफिस अकल दोनगे चु कैसे लवा कार रेडियो चंग इन मिलोंगा इला नीति कन श्या ओ लॉन्ग तकिन अकल न तुरा दे लेन थे ना दो सक न कन लान मो बोल नीति खाम लो शायद सक से ला चुन ड्राइवर पो खान ओ अ तुम राम तिखा लो लेन पुई से उलुक ओ फिम कोर्ड खान लो खल जेल से तो चलिए अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी बहुत ही खूबसूरत गीत के की आवाज में गाएगी तू जो मिला मेरी तरफ से आप सभी के लिए और स्पेशली मेरे खास दोस्त उशी पी के लिए यस

दोस्तों उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको यस के की आवाज में गाया बहुत ही खूबसूरत गीत तो जो मिला मैं हो गया काबिल। यस, जब हम किसी इंसान से मिलते हैं और मिलने के बाद यस हम खुद में एक ऐसा महसूस करते हैं कि ऐसा कोई एक इंसान मतलब है जो हमें बहुत ही मतलब हमारे बारे में भी सोचते हो और हम खुद को इतना काबिल समझ लेते हैं कि हमारा जो काम है ना सब कुछ अच्छा लगने लगता है। यस, तो यहाँ पर संदेश पढ़ना चाहूंगी फिटनेस बॉय का संदेश। फिटनेस बॉय हियान बॉस वो इन चो थो दिख चो दो तेल में अलाउ चुआन कसोई दोन这底子阿妈总看到你，你没流水清。Such 个好多 ，dum such 美不好存得好，哎。嗯，一个 आदमी की जिंदगी बदल देने वाली तो तुम सच में हो ही अपवांग तूता ले ले ऐ कमान लोम अपन नॉम थे तक एफएम जो ओ ही ओम लवांग दी ही के लाउ चीन इन मैसेज तुम लो तुक ओवर मामा चीन दे ही सियार दे ही गे नॉम चीन वो पंच नी से हे पो ही तो दिख तक तक नी गे मो दरोजाम पिट दिस बॉय ही अरे नॉम लाउट लात दरो एंड जाम ही आना जुबिल ही मो कन उचिपिया ही लेर को व्याव मा से इलो ड्यूटी तो ही चुआन मै पलची आ कंगाई लो आर जुबिल कन उचिपिया कन उचिपिया मी स्पेशल नंग ही अनी आ विकुं विकुं को ब्लोरा सिया को पी मा से आ ओम व्यावे आ को पी मी जाम चुती मो शिवी चिया vi kung ko plora hi rj pa sam se pian cham pa phak hi a she thei lut tu kania a tho pui mei se birthday ishia du chuan lo va zo top chin ro ko plor lut tuk mai ani mo zam ma se o gp chu i tu nai ron so yang kan ko kung ko plora zia a ko pim ma se a om via we ti kha a van bak emem a ko plor ve ngai pon ka she box si lawa ke ma cha kha min du mo kha ka lo ti ya ka ban lo ring swal tak em pai lo em se tro ku zam chuan kung te hian i u kha a confuse lo ka confuse ok oh moi thei bok si a restaurant ma ngai na ti kha han sai zau lo lo te ngoi ro kha ke zui la da cha shi yang oh kung te Saan mga muni hiyan, RGBL to jo mila hitu anal ani kahadam o levan nuam. To chaliye, mga muni ni jese kaha hai ki unhi ice cream jesa sangeet, yes, music chahiye, geet chahiye. To chaliye, main agla geet sunana chahungi tu hitu, yes. Koi muna po kalila, anmani zung, anmani, tsia ka gan ngay tuwa chini, tero gan tin lunga de, gan rilruwa de, in kim ma khan, anmani ka gan kyang, anno mang khan gan feel chini, tero ka dyan lang pangla deo khani ya, to chale sunte hai, tu hitu, meri taraf se, aap sabi ke naam.

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को बहुत ही खूबसूरत सा गीत तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। और ये चलिए आखिरी गीत के साथ आप सभी से विदा लेने का समय आ चुका है। फिटनेस बॉय यान मैसेज रंथोना मसे कचर मनंगे मो खोंगे वो इन सुन दुला मेल चाले फेल पथियान थु ओय बॉक अपुआन ता लाई रिमिन इतोल निलेंग छक मयांग ओ नियांग ओले ओले बहुत बहुत शुक्रिया फिटनेस बॉय आपके बहुत ही खूबसूरत संदेश के लिए। और तो चलिए मेरे जाने का समय आ चुका है और अगले खंड पे आपके साथ जुड़ने के लिए वेस्टर्न म्यूजिक सुनाने के लिए आपकी आर जे तेते हाजिर होगी। तो हम मिलेंगे 11:20 पर, ठीक है। तो ये आखिरी गीत मेरी तरफ से, इस खंड का आखिरी गीत आप सभी के नाम।

करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े। रेज रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने, जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं, कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें। आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने नहीं, रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।

हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हम दोबारा स्वागत करते हैं हिंदी के खंड पे। और आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM सोय 100.7 और हिंदी के खंड पे। दोस्तों आपके साथ जुड़ी हैं आप सभी की दोस्त आरजे वीएली फिर एक बार। और आप सभी का समय कैसे बीत रहा है दोस्तों, और आप सभी को क्या अच्छा लग रहा है हमारे साथ FM सोय 100.7 को सुन के दोस्तों। यस, और मैं चाहती हूँ कि आपका दिन यूं ही अच्छे से बीता रहे। यस, आप किसी से नाराज मत होइए, किसी से नाराजगी मत रखिए, आप गुस्सा मत कीजिए दोस्तों। यस, किसी से भी गुस्सा मत कीजिए, हर इंसान से गलतियां होती है दोस्तों। यस, आप दिल बड़ा कीजिए, सबको माफ कीजिए दोस्तों, है ना। यस, तो चलिए सुनते हैं तेरे हवाले, बहुत ही खूबसूरत गीत अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में गाया गीत मेरी तरफ से। इस खंड का सबसे पहला गीत आप सभी के नाम, और दोस्तों मुझे आपके प्यार भरे संदेशों का इंतजार रहेगा, ठीक है।

दोस्त, उम्मीद है आप सभी को इस खंड का सबसे पहला गीत तेरे हवाले कर दिया। बहुत ही खूबसूरत शिल्पा राव की आवाज़ में और अरिजीत सिंह की आवाज़ में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। तो अब हम चल देंगे अगले गीत की तरफ। और इस गीत से पहले यहाँ पर मामूनी है ना जेवियल हम तुम फिल्म टाइटल सॉन्ग का थंग चाक ए रानी रे सैफ अली ते रसूर नुआया अन लामदुन लाई मिथला मिथला चुंगिन रसूर ही आपुई मो ओ गबन खंग आइ तक एम ना मुनी लुम ते ओम ले मे केनी चो हे एसी ही अन ऑन थ्री ना अब वो थे कंती मा मा जेन नी मो अच्छा नी नन दो अच्छा नी नन दो लवा इन थ्वाम लुम ही अंगाई थे टॉप मे नी मो हेलम पंग ही चो ओले चुआन जाम हेन हेलो आर जे वी एल ओ जाम चुआन कथो बुई ते हियान हा हि फियान अन फक न सा चे निया ए ए हिंदी मन ही अफेल फाइन अफिया का मै अंती चे आ ए लव यू ती तो हि चुआन के नि लो कथो पुई ते ने लमिन नोम कन तिन तलांग ते अनिया इलो ड्यूटी तो रा का इन रिंग इ ड्यूटी लो हि चुआन कन हुई हाई ते अनिया नेक्स्ट सॉन्ग इ ता ने कथो पुई पुजाई पुसमो जी ले पुजाई मा तान क थन सक अंगे हरन ती अनि जा मा हिया अब नोम छिन तक एम ओ चुआन ए हे हे कलो chiar mai palami matluangam mission being hian rjvl li chu duty se message an thon le luai luayang chu ka lungdum la te a tha e ngoro he chu ka tanin lo ka tanin lo hi o le si ya o o chuan to chuan in filhal sunte he माँ मुनि का फरमाइश गीत हम तुम यस। और तो माँ मुनि ने जिस तरह हमसे कहा कि इस गीत में यस सैफ अली खान और रानी मुखर्जी ने बारिश में इस गीत को परफॉर्म किया था और यस रिम झिम झिम झिम बारिश चल रही थी उसी को महसूस करके यस चलिए हम सभी ये गीत सुनते हैं मामूनी के साथ हम तुम बाबुल सुप्रिया और अलका याग्निक की आवाज में गाया गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

Yes, बहुत ही खूबसूरत सा गीत हम तुम। यस, काश हम तुम ही होते तो कितना अच्छा होता है ना। इस जिंदगी में हम तुम के सिवा और कोई नहीं होता। हम तुम के सिवा और सोचने के लिए और कोई होता नहीं तो कितना अच्छा होता जिंदगी। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता। ये सब मतलब ये सब फिल्मी बातें हैं दोस्तों, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर चलते हैं आपके संदेश की तरफ। और संदेश है फिटनेस बोहियान बॉस लाथलन थे मी। अगर तीन चीजें चुनने को मिले तो पहले नंबर पर मेरे टेक्स पढ़ने वाले वाली को, दूसरे नंबर पर मेरे टेक्स पढ़ने वाली को और तीसरे नंबर पर भी मेरे टेक्स पढ़ने वाली को ही चुनूंगा। मुझे पूरा यकीन है। वही तो फिटनेस बॉय पो रोन लुआंग लिया बेमो कन रोमांटिक लांग अनियांग सु तितो मयांग।

तो दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा? इश्क हुआ, कैसे हुआ, जैसे हुआ, अच्छा हुआ। उदित नारायण और विभा शर्मा की आवाज में गाया गीत, यस, आप सभी को जरूर जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। यस, विभा शर्मा। विभा शर्मा की आवाज बहुत सुरीली है ना दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी गीत जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए, अब हम अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी दोस्तों को। यस, बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाऊंगी। लेकिन लेकिन गीत सुनाने से पहले मैं आपके भेजे के संदेश की तरफ चलना चाहूंगी। और संदेश आया है, मोरी सिलार ख्यांग ते ह्याम रोमांटिक सॉन्ग लम पंग ते गाय था क्यों इला करन रिक्वेस्ट ट्वाई मे डोन मोनिले मिस ये प्लेलिस्ट ते अमोई चिन ते तक के हे थू ही सर्वी कुंग ते एन अरुण लान से ओ रिल अरिल रू इन तन हा जब में सोचू यू ही घूमते हुए अनजान एक सुंदर चेहरा मुझको मिला। दिल में बस तू ही रहती है, तुझ जैसा प्यार कोई मिला ना इस दुनिया में, तेरे नशे में पानी सा मैं बह गया तेरे नशे में पानी सा बह गया। वाओ, मॉरिस वजे बया। बहुत बहुत शुक्रिया मॉरिस आपके बहुत ही खूबसूरत शायरी के लिए और मेरे लिए इतना खूबसूरत शायरी सोचने के लिए और टाइप करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मिन मोई ते ह्यान वांदल आर्सेनल फैंस तेतान रोन ते बोकनी ओले चुन कुंते मैसेज चू छ्यारी लो मैं छ्यारी ची लो। और हितेंद्र दास जी ने लिखा है, हेलो अजय जी, यस नमस्ते हितेंद्र दास जी, कैसे हैं आप? तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए, एफएम जो 100.7 को प्यार देने के लिए और हिंदी के खंड में आरजेवी एलिक को सुनने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। यस दोस्तों, आप सभी को मैं दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूंगी। और फिटनेस बॉय ने कहा था कि क्या हम गीत फरमाइश कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा इंतजार कर रही थी उनका, लेकिन उनका फरमाइश गीत नहीं आया है, तो इसलिए मैं ये गीत पेश करना चाहूंगी। क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना? यस, जो मैं कह रही हूँ, जो मैं आप सभी के साथ, यस, आप सभी के पास जो कह रही हूँ, क्या वो आपको समझ में आ रही है? तो चलिए सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को मेरे साथ हिंदी के खंड में हिंदी के गीतों को सुनकर आप सभी को अच्छा लग रहा होगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा है. मुझे भी बहुत मज़ा आया है आप सभी से बातें करते हुए, आप सभी को गीत सुनाते हुए और आप सभी के संदेशों को पढ़ते हुए दोस्तों. यस, और हमारा समय भी ख़त्म हो गया है, इसलिए दोस्तों आप सभी को आखिरी गीत सुनाकर अलविदा कहने का समय आ चुका है इस खंड के लिए, केवल इस खंड के लिए. और मैं वापस आऊँगी अपने खंड को लेकर दोबारा यस 235 पर वापस मैं आऊँगी. तो चलिए आप सभी एंजॉय करते रहना और जाते जाते फिटनेस बॉय हियान बोस कहलादू चू इशियात खा और कवाई चौंग थ्याम तोप इथ्याम तुक और चान काश में बहकर तुम्हारे पास आ पाता, मेरे ये जो दुख तुम्हारी वजह से है तुम समझते ही नहीं संशिबारी के फूल की तरह सुंदर चेहरा लिए खुश रहकर हमेशा खिलती रहो तुम अब हन्नल थे तक एम azam hian het sala rjvl omhar kevin lama changin message thum chia ri glow chi dong elo asa kasa kasaphat maile enge kati thei ashe top ashe khop angle achau lo tur achau ta em ni eng che sai lo vel te segment da achak lo ang sala ron tiari zam hian ai zu dang lang bang ni lo zam chị ta làm bằng chân thì lâu đeo lâu anh lâu vắt lâu mấy rồi ओले. तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को मेरा साथ देने के लिए. तो मैं चलती हूँ इस आखिरी गीत को लेकर, दिल में दर्द सा. यस यस. तो मैं जब मैं वापस आऊंगी तो मैं फिटनेस बॉय का जो मन पसंदी गीत है मैं वो सुनाऊंगी उनको. यस, आप सभी को. यस, तो चलिए सुनते हैं इस खंड का आखिरी गीत और दोस्तों मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं 235 पर. और आप सभी अपना समय, अपने समय अच्छे से बिताना, ठीक है. यस, अगले खंड में आपके साथ जुड़ने के लिए आपकी दोस्त लवली आरजे तेते हाजिर होगी वेस्टर्न म्यूजिक सुनाने के लिए दोस्तों. तो चलिए ढेर सारी बातें करिए. तो मैं चलती हूँ इस आखिरी गीत को लेकर, तो आरजे वीरे की तरफ

नमस्ते श्रोताओं, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े रेज रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने, जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं, कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें। आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने नहीं, रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।

हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर आप सभी प्यारे दोस्तों को. और आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM 100.7. दोस्तों, और आप सभी का समय कैसे बीता दोस्तों? यस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का भी समय अच्छे से बीता होगा. मेरी भी बीती है अपने दोस्तों के साथ वक्त बिता के, और आपने भी अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताया होगा. यस, और शायद किसी से बातें करते हुए आपका समय अच्छे से बीता होगा. एम आई राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के हिंदी के आखिरी खंड को. और मुझे आपके प्यार भरे संदेशों का इंतजार रहेगा. यस, और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे साथ हिंदी के संगीत की दुनिया में. दोस्तों, चलिए थोड़ा सा समय, मतलब थोड़े से समय के लिए चलिए, मतलब डूब जाते हैं सब कुछ भुला के. सुनते हैं श्रेया घोषाल और रितु रिबा की आवाज में गाया गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत. इस खंड का सबसे पहला गीत प्यार आता है मेरी तरफ से आप सभी के नाम.

एक लम्हे में सो सो बार आता है और प्यार आप पे ही आता है। काश ऐसा वाला इंसान हमारे पास भी होता जिसको हम इतना बेहद प्यार करते हैं ना दोस्तों। तो ये गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और यस, जैसे कि मैंने कहा था कि आप सभी से कि जब आज ये रियली यस एफ एम जो पर हाजिर होती है तो क्या होता है। ये होता है कि हम एक दूसरे के साथ प्यार भरे बातें करते हैं, है ना दोस्तों। यस, तो चलिए प्यार प्यार के बारे में तो मैं मतलब मुझे बहुत कुछ कहना है आप सभी से, और आप भी जानते होंगे प्यार के मतलब प्यार के बारे में, प्यार क्या होती है, प्यार क्या चीज है, प्यार मतलब प्यार को क्या करना चाहिए, ये सब वगैरह वगैरह। तो चलिए फिलहाल प्यार वो चीज़ है जो उनके होने या ना होने से सब कुछ अच्छा लगने लगता है। वैसा वाला प्यार मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए फिलहाल सुनते हैं सुकून मिला अरिजीत सिंह की आवाज में गाए गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

सुकून मिला दोस्तों अरिजीत सिंह की आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ जल्दी से क्योंकि हमारा समय केवल 3 बजे तक का है दोस्तों। ओ इन वन रे एम एम विले तो कोंगते हियान अच्छे मूवी जो जोकर दलजा मखान अफसन तक तक तो चे एम नी अजोक मई मई चु अनिलो मसे सुम सियाम ना नमंग तो चे आ करिंग लेल तलो कोंगते एंगे सुम सियाम ना इरोन टी वे जा ही कमन फलो ओ मिलो शिल्फिया लोकते अले चान सामान नरोन टाइप में का चान और कल खाक लुक दोंगे तो चलिए मेरे दोस्त जामा के इंतजार के लिए मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी को पल। बहुत ही खूबसूरत गीत अरिजीत सिंह की आवाज में ही गाया गीत है दोस्तों। दोस्तों हमें क्या करना चाहिए कि हमारा ये जो छोटी सी जिंदगी है ना इस जिंदगी को हर दिन हर पल बहुत ही यादगार हमें बनाना चाहिए है ना दोस्तों। और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा ये जो हर पल हर समय को मैं यादगार बनाऊँ एक अच्छे दोस्तों के साथ और वो है आप लोगों के साथ। मुझे FM ZOR 100.7 बहुत अच्छा लगता है। FM ZOR 100.7 पर आपसे बातें करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप सभी के प्यार भरे संदेशों को भी पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और उसी तरह आप भी मेरे साथ हिंदी के गीतों को सुनकर आपके अपने संदेश को मतलब जो मैं पढ़ती हूँ हम जो पढ़ते हैं वो सुनकर आपको भी अच्छा लगता होगा दोस्तों। इस तरह हमारा प्यार हमेशा चलता रहे है ना दोस्तों। और हम सभी इस पल को बहुत ही यादगार खुशियाँ से भरने के लिए कोशिश करते रहते हैं है ना दोस्तों। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं पल मेरी तरफ से श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज में गाएंगे मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को यह श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज में गाया गीत पल आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। अब दोस्तों, वो घड़ी आ चुकी है जो आपको एक गीत सुनाकर यहाँ से चले जाने का। यस, मन तो नहीं करता है लेकिन क्या करें, हमारे पास उतना समय नहीं है आपको गीत सुनाने का और आपसे बातें करने के लिए दोस्तों। यस, तो यहाँ पर अभी कुंते हियान जो कर्जा मन अदु हुन हुना अशल से लोम कई कई पो इन सुम तम तकिन के लेई से आ तुना चुआन अनि अनि ता इनि तो इनि इनि थे तो लो अमो सन अले दु वे मे थे जे ओ तु ति जोंग चान मो के छे थ्याम छा चान जा मा हियान आ जे वान लान आन क मोले तिन रेंग दम दोय ने दु ते बेला क ओइ छा ल ओ जा मे खेर हि छु ओ Tuang tekin ho ang tse o in run lam tuang in zona a film kur te ang berin o soi le soi nu ma ni lam film kur viao chung pon mi tam tak film kur lau zar po zar dor pa te na tam tak hi a om chok ni a tin kung ler thak at tin kung ler thak तो सही का चोटा कुकपुई लो कुकपुई चियाम दु अंग पुइन गोरो ओ कंचा चले लोग तिन कुंग लेर थका तो सही का चोटा कुकपुई लो कुकपुई चियाम दु सो अंग चे ओ एंग एंगा एंगा मा लो ला एंगा एंगा एंगा मा लो गाई लौला अथुसोई दुदान जिया चु इशिया देख तो खाम नेक्स्ट सॉन्ग कुंग लेर थागत तेल लविन हितान चो अले इस यंग जेल जान निरो से ओ जाम चान हितेंद्र दास हियान हेलो आर जेम गुड आफ्टरनून। यस, आपको भी गुड आफ्टरनून हितेंद्र दास जी। आपको मुझे संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिटनेस बॉय हियान अतोप नान हे ओ तो नंग हुन हिचु एंग मा सोय ना हुन अनि तक तक तो लवे कसेन शिपार मोय बेर इन टोन ले मा जोंग दम तकिन मंग छाल ल पन मल सोम चे सिला लिम टेन वुल जे नांग चे बाय बाय एरन त्यानि फिटनेस बॉय इन आन का हि अवहन थुम वोंग वोंग चिन तक ए मो यस इसीलिए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है FM 100.7 पर आना, आपसे बातें करना, आपको गीत सुनाना। यस तो यस जिस तरह आपकी संदेश इतना मतलब इतनी मीठी है ना दोस्तों, उसी तरह आपका भी नेचर, कैरेक्टर, बिहेवियर सब कुछ अच्छा होगा। यस तो मैं जाते जाते कहना चाहूँगी कि आप किसी का दिल मत दुखाइएगा। जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, आप जितना मतलब आपकी तरफ से जितना हो सकेगा आप दूसरों के लिए प्यार बरसाइए। ठीक है? यस और मैं भी आज वेरी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको ढेर सारा प्यार संगीत के द्वारा या संगीत के जरिए आप तक पहुंचाया सकूं। यस और जब तक हम नहीं मिलेंगे दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखना। ठीक है? यस तो आखिरी गीत के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी और इस खंड का आखिरी गीत मैं सुनाना चाहूंगी। बहुत ही खूबसूरत गीत दोस्तों, हमारी अधूरी कहानी। यस लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपका मतलब आपके जिंदगी में ना किसी के साथ भी एक अधूरी कहानी ना बने। ठीक है? यस और हमेशा आपका जीवन किस मतलब एक हमसफर के साथ यूं ही बनाया मतलब हमेशा बरकरार रहे। दोस्तों, हमारी अधूरी कहानी सुनाना चाहूंगी आप सभी दोस्तों को। यस जाते जाते और मैं नहीं चाहती कि यस मैं बिल्कुल नहीं चाहती आपका मतलब आपके लाइफ में कोई भी ऐसा रिश्ता अधूरा हो दोस्तों। यस तो चलिए, ये आखिरी गीत मेरी तरफ से आप सभी के लिए और आरजे वीरे की तरफ से। बाय बाय, टेक केयर, बे कूल। और यस, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को मेरा साथ देने के लिए, मुझे संदेश भेजने के लिए। ठीक है दोस्तों, हमेशा खुश रहना। ठीक है, बाय बाय। ओ

0: नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। वार्ता के दौरान भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सहउत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने हेतु सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। मौसम विभाग ने इस सप्ताह उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले चार दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बनी रह सकती है, जबकि असम, मेघालय, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कराईकाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले दो दिन तक बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक के आंतरिक और तटीय क्षेत्र, झारखंड, लक्षद्वीप और कर्नाटक में आंधी चलने और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। राजस्थान के अधिकांश जिले इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के दो जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome in a short while from now to discuss ways to boost India-Italy cooperation. With a focus on strengthening India-Italy relations, major pacts may be announced later in the day. Both leaders will exchange perspectives on a wide range of subjects. A series of programs will be held in Rome to mark the importance of the bilateral relations between the two countries. PM Modi's visit will also focus specially on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will also be reviewed during the meeting. In a social media post before the talks, Prime Minister Modi expressed hope that the talks will be focusing on strengthening India-Italy relations. Mr. Modi said that upon landing in Rome, he had the opportunity to meet Prime Minister Meloni over dinner, followed by a visit to the iconic Colosseum. He said both leaders exchanged perspectives on a wide range of subjects. The Prime Minister added that today's talks will continue the conversation on boosting India-Italy friendship. Prime Minister will be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. President Draupadi Murmu today said that to achieve the goal of a Viksit Bharat and take society to the pinnacle of progress, officers will often have to move forward by striving against the tide. She said this after a group of IAS officers from the 2024 batch called on her at Rashtrapati Bhavan today. The president said the young officers will have the unique opportunity to work in diverse fields and head teams of experts in specialized areas. Ms. Murmu said refraining from making a decision does not constitute morality. She emphasized that taking the right decisions in alignment with public interest and established order represents the true essence of morality. Defence Minister Rajnath Singh today held a meeting with his South Korean counterpart Ahn Kyung-bak in Seoul. During the meeting, they discussed ways to further deepen India-South Korea defence industry and strategic cooperation with a shared commitment towards regional peace, stability and technological collaboration. In a social media post, Mr. Singh said it was a highly productive meeting as India and South Korea exchanged agreements on promoting defence cyber cooperation. Defence Minister Rajnath Singh has complimented DRDO, public sector undertakings, defence cum production partners and industry for the successful development trials of ULPGM V3. He highlighted its effectiveness in air-to-ground mode for anti-tank role and air-to-air modes for drone, helicopter and other airborne targets. Mr. Singh termed it a strategic milestone achieved towards Atmanirbharta in defence. The Supreme Court today dismissed a petition challenging the centre's decision to undertake caste enumeration as part of the upcoming census, saying the issue falls within the policy domain of the government. A bench

नुबई, और आज के शाम आपके लिए यहाँ फिर से बैठी हूँ। आशा करती हूँ कि मैं जो आप लोगों के लिए गीत प्रस्तुत करूँगी वो आप लोगों के शाम को रंगीन बनाए। तो जी हाँ, इस खंड में हम सुनेंगे बैंग बैंग, लव यू मिस्टर कलाकार और शिवम फिल्मों का बहुत ही खूबसूरत गीत। तो हम शुरुआत करेंगे लव यू मिस्टर कलाकार फिल्म के टाइटल सॉन्ग से, और गीत की बोल है लव यू मिस्टर कलाकार। तो आइए सुनते हैं ये गीत, और ये गीत मैं आप सभी लोगों के नाम करती हूँ।

मेरे प्यारे श्रोता, ये था लव यू मिस्टर कलाकार फिल्म का टाइटल सॉन्ग लव यू मिस्टर कलाकार। अब हम नजर डालेंगे आपके संदेशों की ओर, और मुझे यहाँ सीजेट की ओर से आरजे लोमसांग रंते हरोपुइंग दिन मो शुभ संध्या रंती। आपको भी मेरी ओर से मेरा प्यार भरा शुभ संध्या, और वी कुंग ते हैं ना जब वही नोटों लाई दम ठामो इशाय लें चौथे अंदम में पाबेरिन अंगेन चे एम रंती पाबेरिन ये ना मुन लम ट्रेंग कलो कलो मो फिंग चुंग ये लो वे कन लाइन मुलो शिम शिम पाबेरिन हम चाने कन दम चाए नंग मा का इदम चाए ती का कन शिवे दुनी चुमम तुझान जेलो जाम हियान हेलो आर्जे नुपे नमस्कार नमस्कार। नेक्स्ट सॉन्ग इतान ले इंग्लिश आर्जे ड्यूटी पुइतूर RJ Sparkle Stan CLP Kriya Win O Duty Nuam Ule Arantia Kanlom Lutung Ningnipo

मेरे प्यारे प्यारे श्रोताओं, कैसे लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था लव यू मिस्टर कलाकार फिल्म, क्योंकि ये दर गीत की बोल है भोरे भोरे बादल। अब हम फिर नजर डालेंगे आपके संदेशों की और मुझे यहाँ भी कुंते की ओर से मिला है, वो लिखता है के पोगदम ठाए प्ले ले तुरखा इन छों को तान ओ अरंतिया कनवान लोम छिन तक एम वी कुंग ते आ गई पर नेक्स्ट सॉन्ग खा इतान ले इन छों ते तान इन छों को जोंग जोंग तान कर रंतियांग। तो जी हाँ मेरे प्यार श्रोता, अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर, लेकिन अगला गीत सुनने से पहले हम ये सूचना आप तक पहुँचा देते हैं। आकाशवाणी आइजोल चुआनी सोमनी प्रथम

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था बैंग बैंग फिल्म का टाइटल सॉन्ग बैंग बैंग। और जी हाँ, हमारे पास ज्यादा अब समय नहीं है, इसीलिए जो मुझे संदेश मिला है वो मैं आप तक पहुंचा देती हूँ। यहाँ मिंग मोई तेहिया नार्जे नुबई नमस्ते देवती नुआमले अरुंतिया। आपको भी मेरी ओर से मेरा प्यार भरा नमस्कार और हुनमन नुआमले गंतव्य भुगंग। और नेक्स्ट गीत जो है वो मैं आप लोगों के लिए डेडिकेट करूंगी। हमारा नेक्स्ट गीत होगा उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में, खोए से हम खोए से तुम। इसी गीत के साथ इस खंड के लिए मैं आप सभी लोगों से विदा लूंगी, फिर से आप लोगों के पास लौट के आऊंगी 6:40 पे। तब तक आप हमारा इंतजार कीजिएगा और सुनते रहिएगा FM जवाई।

नमस्कार आप सभी लोगों को आपकी आरजे नुबई की ओर से स्वागतम। और ये हिंदी का हमारा दूसरा खंड है। इस खंड में मैं आप लोगों को अलग अलग गायकों का अलग अलग गीत सुनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम सुनेंगे आतिफ असलम की आवाज में, और गीत की बोल है ओ रे पिया। तो आइए सुनते हैं ओ रे पिया आप सभी लोगों के लिए।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था आतिफ असलम की आवाज में और गीत की बोल है ओ रे पिया, बहुत ही खूबसूरत गीत है। अब हम नजर डालेंगे आपके संदेशों को भी कुंते हैं नाजे बनी प्ले ले तुर खा गुरु साइला मुंग मोइते अच्छी पी खोल शिंग ले कपु के वाल ते था न जो करलल जाम लवचु मई तयंग रंती जो करलल जाम लव मई मिया लवीना रंती दो मोकतिया मई तयंग रंती आ चुबांग चानिन जाम जाम बैते खा निंग रंतियंग ओ कुंग बैते हे। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर। हमारा अगला गीत होगा श्रेया घोषाल की आवाज में सुना सुना। तो आइए सुनते हैं सुना सुना।

तो कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था कृष्णा कॉटेज फिल्म का गीत और श्रेया घोषाल की आवाज

में सोहेल खान और ईशा कपूर इस फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्री थी, और गीत की बोल है सूना सूना। बहुत ही खूबसूरत गीत है, मुझे ये गीत बहुत पसंद है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को भी ये गीत पसंद आए होंगे। अब हम फिर आगे चलेंगे हमारे अगले गीत की ओर, लेकिन अगला गीत सुनने से पहले हम आगे बढ़ेंगे आपके संदेशों की ओर। मुझे यहाँ मिला है दुर्गेश की ओर से, गुड इवनिंग आर्जे, नमस्कार। और लिसनर्स का नाम लिखा है दुर्गेश, नागनपुरे एंड फैमिली, ग्राम जसवदी डिस्ट्रिक्ट और खांडवा मध्य प्रदेश से। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर। हमारा अगला गीत होगा अपना पहली सी बात है। तो आइए सुनते हैं अपना पहली सी बात है आप सभी लोगों के लिए।

मेरे प्यारे श्रोता, कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था, उस गीत की बोल है अपना पहली सी बात है, और ये बहुत ही खूबसूरत और रोमांटिक सॉन्ग है। अब हम आगे चलेंगे हमारे इस खंड के आखिरी गीत की ओर, और इस खंड का हमारा आखिरी गीत होगा आतिफ असलम के आवाज में, हम किस गली जा रहे हैं। और इसी गीत के साथ मैं आज इस खंड के लिए आप सभी लोगों से विदा लूंगी, और फिर लौट के आऊंगी 8:02 पे। उस वक्त हमारा चॉइस होगा, यानी कि मैं अपना पसंद का गीत आप लोगों को सुनाऊंगी। तो जी हाँ, मैं हूँ आपकी आरजे नुबई, और इस खंड के लिए हम किस गली जा रहे हैं गीत से आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ।

नमस्कार आप सभी लोगों को आपकी आरजे नुबई की ओर से हमारा आज रात का तीसरा खंड में स्वागतम। और जी हाँ, ये खंड है मेरे चॉइस का, यानी कि मैं अपना पसंद का गीत आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, मैं आप लोगों को हिंदी का बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाऊंगी। तो शुरुआत करेंगे नवजोत आहूजा के आवाज में, और गीत की बोल है खत। तो आइए सुनते हैं खत आप सभी लोगों के लिए।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, अभी जो हमने गीत सुना था उस गीत की बोल है खत, और ये नवजोत आहूजा की आवाज में है। बहुत ही खूबसूरत गीत है। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे दूसरे गीत की ओर, और हमारा दूसरा गीत होगा खामोशियां, फिल्म का टाइटल सॉन्ग खामोशियां। और इस गीत को सुनने से पहले हम जरा नजर डालेंगे गुड बॉय के संदेशों पर। आरजे रुबोई नंगपो इस सेगमेंट तीन खा का जो इनफेक्ट अन्या कलू अना देवा फोन का खोई ठपे लो देवा कलू लंशाम ओ कंगा इपोई मो बोक्सी चे आ रंतिया कनवा हनलोम तक एम इलुना चू एंगे इ अंदम दोई ते खा लो ए चाला तिखाम इ लो ngai खपांग मो चानिन इ ए कनला ते हन लो ओइदम चे सेरो से ओ। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, हमारा अगला गीत होगा खामोशिया, और ये खामोशिया फिल्म का टाइटल सॉन्ग है। तो आइए सुनते हैं आप सभी लोगों के लिए खामोशिया।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था खामोशिया फिल्म का टाइटल सॉन्ग खामोशिया। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये खंड है मेरे चॉइस का, यानी कि मैं अपने पसंद का गीत आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। तो हम सुनेंगे गुरनजार के आवाज में दिल तू जान तू। तो आइए सुनते हैं दिल तू जान तू।

0: जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था गुरनजार के आवाज में और गीत के बोल है दिल तू जान तू। बहुत ही खूबसूरत गीत है, आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आए होंगे। तो जी हाँ, अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर। मैसे उससे पहले हम फिर सुनेंगे आपके, पढ़ेंगे, सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे आपके संदेशों को, माफ कीजिएगा। मुझे यहाँ मिला है एलसेट साइलो की ओर से, इन बॉल्स होता मिस हिंदी लाही चू कुमिंदान वो पो कशे लो अपुंग तू ही लो स्टार ले मयंग अरुंतिया कुम कनवाहन लोम ठीन तक एम ई कुमिन वक ngay na po niya kay comment vak ngay na hiwang at roma si in la du zong te in la nal ti zong te karon soy ve chi ni la amoy kan lo ti ve te chong kan lo play ngay ta kan nei te chong kan lo play ve zel don ni mo el zet sai lo ka chuan in i message avang kang kan lom lutuk bo kan ni te chuan in lal din pu ya fal kon veng la hian in a je play le tur kha nang matan le lo ngai kha ve zong zong tan ron ti ya aapka bahut bahut shukriya। To ji ha, aaye hum aage badhenge hamare agle geet ki aur hamara agla geet hoga Atif Aslam aur Shirley Shetia ki aawaz mein jab koi baat, aur ye geet jo hai Elze Silo vi kung te ameng moi te ain za vai tan din pu ya fal kon te tan khan o
1: All good, Chetas. So I've just completed this super project of mine and I need a vocalist for that. So are you free to come to Dubai?

तो जी हाँ, मेरे प्यारे श्रोता, कैसा लगा अभी जो हमने आप लोगों को गीत सुनाया था? वो था जब कोई बात, और ये आतिफ असलम और शेरली शेठिया की आवाज में है। ये बहुत ही खूबसूरत गीत है। आप सभी लोगों को पता होगा कि ये पुराने फिल्म जुर्म फिल्म का गीत है, और उस फिल्म में अभिनेता था विनोद खन्ना, जो जिसके अभी देहांत हो चुके हैं, और अभिनेत्री थी मीनाक्षी। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे इस खंड के आखिरी गीत की ओर, और आखिरी गीत की ओर जाने से पहले हम जरा नजर डालेंगे आपके संदेशों पर। और मुझे यहाँ मिला है ओमेगा सांगते की ओर से, तुनार जे दिवती ही ओ कैसे हुआ ती खा मोय कतिया अफीम खा मु नुम कति बोक पंगपार हुआ ना ते खान अनलुम त्याल त्याला आती जी चावला ले आमिर खान खान लुम त्वाल त्वाल कंती दोन या अनलुम अनलुम त्याल त्याल कंती दोन तेरा चुआन इन काजोल ले अजय देवगन का मासे नेक्स्ट सेगमेंट आगन प्ले यंग इश्क हुआ कैसे हुआ का, क्योंकि मैंने अभी चुन चुकी हूँ अगले गीत, और इस खंड का हमारा आखिरी गीत, इस खंड का हमारा आखिरी गीत होगा कुणाल गुंजरवाला की आवाज में, और गीत की बोल है भीगी होंठ, और ये मर्डर फिल्म का गीत है। तो आइए सुनते हैं भीगी होंठ।

आप सभी लोगों को आपकी आरजे नुभई की ओर से हमारा आशीर्वाद। ये आखिरी खंड में स्वागतम। और जी हाँ, इस खंड में हम आप लोगों को सुनाएंगे आपके मनपसंद गीत। तो हम शुरुआत करेंगे बदलापुर फिल्म के गीत से, और गीत की बोल है जीना जीना। और मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इस खंड में हम सुनने जा रहे हैं अलग अलग फिल्मों का अलग अलग गीत, यानी कि फिल्म कलेक्शन। और जी हाँ, आशा करती हूँ कि मैं जो गीत आप लोगों को सुनाऊंगी वो आप लोगों को भी पसंद आएंगे। तो जी हाँ, आइए सुनते हैं बदलापुर फिल्म से जीना जीना आप सभी लोगों के लिए।

तो कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था बदलापुर फिल्म से, और गीत की बोल है जीना जीना। बहुत ही खूबसूरत गीत है। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर। हमारा अगला गीत होगा ऑथम्स के आवाज में, और गीत की बोल है सुकून। तो आइए सुनते हैं सुकून।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था ऑथम्स के आवाज में और गीत की बोल है सुकून नल नी तिरो नल कन तितलांग बोक न्यांग तू ना पो हियान इन एलजेट साइल हो हियान इन नुबोई सुकून ही चू मोई कन ती देव फेक न्यांग मिस्टर ता साथ हियान तम थे ए अल्लाह ही अनरन मंग से लम मई अति अनल कन तितलांग फेक नी तिरो है आजे आर के पो हियान इन मो सुकून ही चू नल लौटिया कई पन नल कटिया नंगनी हाउ पन नलिन तीवे कबे सेन चानिन एल से साइ लो खान नली तीवे मो इति ने ती लो खै सोई मे अलवा इति वे ने कन बे से बकनी। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर। हमारा अगला गीत होगा लकी फिल्म से, गीत की बोल है सुन जरा।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो गीत था सुनजराला की फिल्म का गीत है। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की, और उससे पहले हम पढ़ेंगे ललदिन पियफल कौन वेंगलाई के संदेश। आज प्ले ले तुर खा नंग माता लिया लिया और अंतिया कनवाहन लोम तक एम कन लोम चियांग क्वांग ओवर बोन ट्वाइस नि तप मैनी चुवांग चाने नेक्स्ट सॉन्ग ही ललदिन पियफल कौन वेंगलाई तान कन रोंती वे बोगा। तो आइए सुनते हैं छूकर मेरे मन को एफ4 द्वारा गाया गया गीत।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था छू कर मेरे मन को, और ये गीत जो है ये बहुत ही पुराने फिल्म का गीत है, और ये गीत जो है मुझे बहुत पसंद है। इस गीत को गाया था याराना फिल्म में, और ये गीत बहुत ही हिट भी हुआ था उस समय। बहुत ही खूबसूरत गीत है। अब हम फिर आगे चलेंगे हमारे अगले गीत की और हमारा अगला गीत होगा साईबो। तो आइए सुनते हैं साईबो।

तो जी हाँ, मैं प्यार श्रोताओं, ये था साहिबो। कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था साहिबो, और बहुत ही खूबसूरत गीत है। अब हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बचे हैं इस खंड के लिए और आज रात के लिए, इसीलिए मैं आप सभी लोगों से विदा लूंगी। और इस खंड का हमारा आखिरी गीत होंगे कसों चर चर आखिरी गीत कमो नल दे उल्ले कपले सकते हो कदूसिया तो वांग चुआनिन। इस खंड का हमारा आखिरी गीत होगा केसरिया, और इसी गीत के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लूंगी। केसरिया ही अतोई दे उल्हे का आखिरी गीत तिलो में यहाँ दंगन गई थक बेल ले दोनिया। तो आइए सुनते हैं हमारा अगला गीत केसरिया।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था शायद और इस खंड का, और आज रात का हमारा आखिरी गीत होगा तेरा यार हूं मैं। और इसी गीत के साथ मैं आपकी आरजे नुबई आज रात के लिए आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ, और अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड नाइट स्लीप।